मुख्तलिफ अकायद और मुख्तलिफ ज़बानों की मुश्तरक कहानी है जिसकी ये मेज़बानी करता है। कभी ज़मीन के नीचे अपनी नींद से जागने वाली ये कहानी सुनाते हैं, कभी लोरियों लोकगीतों माजी के निशानात के साथ। अनातोलिया कभी अपनी फितरत में छुपी कहानी को गैर मुतवक्का तौर पर जाहिर करता है, कभी अपनी मुनफरद साख्तों में जो सदियों से टकराती हैं। कहानी के आसार रियासतों के दारुलहुकूमतों में पाए जाते हैं। हतीतियों से लेकर अर्थियों तक, बाज़ेंटिनियों से लेकर उस्मानियों तक, अगरचे उनकी सकाफ़तें और जुग्राफियाई हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन ये सब अपने दारुलहुकूमतों को खुसूसी अहमियत देते थे। राजधानी रियासत की ताकत को ज़ाहिर करने के लिए मुनफरद तामीराती कामों से लैस हैं। हम इन तहजीबों, रियासतों और सल्तनतों को उनके दारुलहुकूमतों के ज़रिए बयान करते हैं। हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एद्रियान, सल्तनत उस्मानिया के दारुलहुकूमतों में से एक, जिसने 600 साल से ज़्यादा अरसे तक हुकूमत की, और एक शानदार तामीराती काम सलीमिया मस्जिद और उसके अहाते के बारे में बात की जाएगी। ज़माने कदीम से शुरू होकर हर दौर में लोग एद्रियान में आबाद हुए। दो अहम दरिया जिसे तुंज और मरीच एद्रियन की तरजीह में अहम किरदार अदा करते हैं। रोमन दौर में शहनशाह हद्रियानिस ने इस शहर की तस्वीराती अहमियत को महसूस किया और इसका नाम हद्रियान पोलिस रखा, जिसका मतलब है हद्रियान शहर। यह नाम वक्त के साथ बदलता है और सल्तनत उस्मानिया ने शहर को फतह करने के बाद इसका नाम एदिरने रखा। दारुलहुकूमत को यहाँ मुंतकिल किया गया क्योंकि ये यूरोप में फतुहात का एक अहम नुक्ता आगाज था। एद्रियान ने इस्तांबुल की फतह तक 88 साल तक सल्तनत उस्मानिया का दारुलहुकूमत बना रहा। एद्रियान सराय हमाम पुल मदारिस और मसाजिद से लेस है, जैसा कि उसके दारुलहुकूमत के लिए मौजू है। उस्मानी सकाफत और फन तामीर पूरे शहर में झलकते हैं। जब इस्तांबुल दारुलहुकूमत बनता है तो एद्रियाना की अपनी अहमियत बरकरार रहती है। सलीम दोयम ने क़िब्रस को फतह करने के बाद वो एदिरने में एक मस्जिद बनाना चाहता है और यह काम मैमार सिनान को दिया जाता है। मैमार सिनान के लिए ना सिर्फ इस सरजमीन के बल्कि आलमी तारीख के सबसे मशहूर मैमारों में से एक हैं, क्योंकि वह एक बासलाहियत हैं जो अपनी तख्लीकात में तकनीक, जमालियात और सकाफती अनासर को महारत से मिला देते थे। सिनान के पास इंजीनियरिंग और फन तामीर का इल्म अपने वक्त से बहुत आगे था। यह काबिलियत उनके तमाम कामों में छिलकती है। एदिरने में वाक़ सलीमिया मस्जिद और कॉम्प्लेक्स उनके कामों में ख़ास मकाम रखता है और वो सलीमिया को मेरा शाहकार करार देते हैं। ये आर्ट की ताकत के साथ अपने इसी साल के तजुर्बे को इकट्ठा करते हैं। इसे सलीमिया मस्जिद में नाकाबिल यकीन नज़ाकत और तफसीलात के साथ जाहिर करते हैं। माहिरीन का कहना है कि सलीमिया मस्जिद उस्मानी फन तामीर के उरूज की नुमाइंदगी करती है। पहली बार यूनेस्को ने आलमी सकाफती वरसे की फहरिस्त में एक मस्जिद को शामिल किया क्योंकि यह अपनी मुनफरिद खसूसियात के साथ एक शाहकार है और इंसानी तारीख के एक या ज़्यादा अहम अदवार की नुमाइंदगी करती है। जब आप एदिरने में दाखिल होते हैं तो सलीमिया का खाका अपने दो मीनारों के साथ जाहिर होता है। मैमार सिनान ने मस्जिद को शहर की तरफ देखने वाली एक पहाड़ी पर रखा है ताकि उसे हर जगह से देखा जा सके। जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं, सलीमिया अपनी यादगार शक्ल और मुनफरिद फन तामीर के साथ अपनी तमाम तर शान और शौकत जाहिर करती है। सलीमिया मस्जिद अपने शानदार गुंबद के साथ चार खूबसूरत मीनार, मदरसा, कुतुब खाने और बाजार कॉम्प्लेक्स के बीच में वाक़ है। सबसे अहम खसूसियत जो सलीमिया को दीगर मसाजिद से मुमताज़ करती है वो इसका गुंबद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुंबद है जो किसी तामीराती अंसर के तावुन के बगैर बनाया गया था। तकनीकी तौर पर इतने बड़े गुंबद से बड़े सुराखों को ढांपना बहुत मुश्किल है। फन तामीर की तारीख में बहुत कम ढांचे सिर्फ एक देव हैकल गुंबद वाली इमारत का मुकम्मल अंदरूनी और बैरूनी तस्वुर तख्लीक करते हैं, इस कदर के रोमी दौर में पैंथियन, बाज़ेंटिनी दौर में आया सोफिया, 13वीं सदी में तामिर होने वाले फ्लोरेंस कैथेड्रल और उस्मानी दौर में सलीमिया मस्जिद के अलावा मिसालें देना मुमकिन नहीं है। आया सोफिया हमेशा इस्तांबुल के सबसे शानदार और अहम अनासर में से एक है, जो मशरक़ी रोम का दारुलहुकूमत भी था। उसके मजहबी माने से हटकर ये अपने गुंबद के हजम के लिए भी जाना जाता है।
عمر سنان بھی آیا صوفیہ سے متاثر تھے اور ہمیشہ آیا صوفیہ کے گنبد سے بڑا گنبد بنانے کا خواب دیکھتے تھے۔ اس خواب کی تعبیر سلیمیہ مسجد میں ہوئی۔

अपने 43 मीटर ऊंचे और 32 मीटर कुतर के गुंबद के साथ सिनान आया सोफिया से गुजरते हैं और सलीमिया मस्जिद में एक यादगार काम तख्लीक देते हैं। उस दौर के तकनीकी इल्म को मद्देनजर रखते हुए सिनान ने नामुमकिन को पूरा किया। ये मीनारों के साथ सलीमिया के देव हैकल गुंबद के बैरूनी असर पर जोर देता है। तमाम गुंबद से आसमान की तरह खूबसूरती से उठने वाले मीनारों को दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मीनार होने का एजाज़ भी हासिल है। 85 मीटर ऊंचे मीनारों की एक और खसूसियत यह है कि यहाँ 3 सीढ़ियाँ हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप के लिए बगैर अलहदा बालकोनियों तक पहुँचती हैं। ये एक और नुक्ता है जहाँ मैमार सिनान की जहानत को देखा जा सकता है। सलीमिया के देव हैकल गुंबद का बुनियादी असर अंदरूनी हिस्से में महसूस किया जा सकता है। चूंकि मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कॉलम जैसे अनासर से मुनक़सम नहीं है, इसलिए यह बहुत बड़ा और कुशादा है और पूरी जमात एक ही जगह जमा हो सकती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि लोगों पर उसके असरात और उससे जो जज्बात उभरते हैं उसे बयान कर सके। सबसे बेहतर काम यह है कि इस गुंबद के नीचे रहकर इस असर को महसूस किया जाए। मीमार सिनान ने सैकड़ों छोटी खिड़कियां मस्जिद की दीवारों और गुंबद पर लगाईं ताकि सलीमिया जैसे बड़े पैमाने पर इमारत को मुनासिब तरीके से रोशन किया जा सके। मस्जिद की अंदरूनी आराइश भी उतनी ही मुतासिर कुन है जितनी के उसका फन तामीर। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा एक मुख्तलिफ बसरी दावत पेश करता है जिसमें लकड़ी, मोती की माम, मार्बल में उमदा कारीगरी और टाइल्स के नक्शों की बेहतरीन मिसालें हैं। मिंबर और इसका मेहराब संग मरमर की कारीगरी का शाहकार है। एक और तफसील जो सलीमिया मस्जिद को ख़ास बनाती है वो है उसके अगले हिस्से पर परिंदों के घर। यहाँ इतना शानदार और उम्दा पत्थर का काम है कि उसे परिंदों का घर नहीं बल्कि चिड़िया का महल कहा जाता है। कोई परिंदा बनकर इन महलों में रह सकता है। सलीमिया मस्जिद और इसका सामाजिक कॉम्प्लेक्स एक शानदार इमारत है जो एदिर्ने के साथ मिल जाता है और शायद शहर के सामने खड़ा है। अपनी तकनीकी कमालात की बदौलत ये जलजलों और कुदरती आफात से मुतासर नहीं होता, ये सालों का दिफा करता है। ये मैमार सिनान का सबसे शानदार काम है और इसे मसाजिद की तरक्की के लिहाज से उस्मानी फन तामीर का आला तरीन मकाम समझा जाता है। उन लोगों की तादाद जो कहते हैं कि एक गुंबद से मुराद अल्लाह की वहदानियत है, चार मीनार चार खुलफा के लिए, 5 मंजिला खिड़कियां इस्लाम की हालत के लिए और 4 फिरकों के लिए 4 तबलीगी कुर्सियां। मैमार सिनार का नुक्ता नज़र इतना मुख्तलिफ था कि यह हैरत की बात नहीं है कि उसने इस उम्दा सोच को अपने डिज़ाइन की तफसीलात में रखा। हो सकता है कि वो देव हैकल गुंबद आसमानी गुंबद की नुमाइंदगी कर रहा हो। तमाम लोग आसमानी गुंबद के नीचे जमा होते हैं। सामीन, आज हमने सलीमिया मस्जिद और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की। यूनेस्को की तरफ से सकाफती कामों की फहरिस्त में शामिल पहली मस्जिद जिसे उसके तूल अर्स और जमालियाती कदर के साथ इंसानी जहानत का शाहकार करार दिया गया है। नसली खान देर में जी ओलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। अब अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की अफसुदा यूरेनियम के जखीरे को तबाह करने की खातिर या तो फौरी तौर पर अमेरिका के हवाले किया जाएगा या फिर इसकी मौजूदगी के मुकाम पर या किसी और काबिल कबूल जगह पर तल्फ कर दिया जाएगा। ट्रंप ने पीर के रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जारी करदा बयान में कहा है कि अफसुदा यूरेनियम और जौहरी मवाद को तल्फ करने के लिए या तो फौरी तौर पर अमरीका के हवाले किया जाएगा या फिर ईरान के तआवुन से और एटमी तआवुन कमीशन, तवानाई कमीशन या किसी मसावी इदारे की निगरानी और मौजूदगी में इसी मुकाम पर या किसी और काबिल कबूल जगह पर तलफ किया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और इसराइल की जानब से ईरान के खिलाफ जारी जंग को खत्म करने के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिशें आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। चीन के सरकारी ज़राए ब्लाक के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने पीर के रोज चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ मुलाकात में कहा है कि अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया है कि जब इस्लामाबाद ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज कर दी हैं। रोजनामा चाइना डेली ने चीन वजारत खारजा के हवाले से जारी करदा खबर में कहा है कि आसिम मुनीर ने यह बात पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के सरकारी दौरा चीन के मौके पर बीजिंग में होने वाली मुलाकात के दौरान कही है। ईरान ने कहा है कि अमरीकी और इसराइली तैयारों ने आबनाए हुरमस में ईरान के जजीरा लार्क के जनूब में ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया जिसके नतीजे में चंद ईरानी शहरी हलाक हो गए हैं। ईरान की नीम सरकारी फारस खबर रसां एजेंसी ने मंगल के रोज़ शाया करदा खबर में कहा है कि अमरीकी और इसराइली तैयारों ने ईरान के जजीरा लार्क में ईरानी जहाज़ों पर हमले किए हैं। एजेंसी ने हलाकतों की दुरुस्त तादाद नहीं बताई, ताहम बाज़ ज़राए इब्लाग की खबरों के मुताबिक इन हमलों में चार अफराद हलाक हो गए हैं। ये खबरें ऐसे वक्त पर सामने आ रही हैं कि जब जंगबंदी बरकरार है और अमरीका और इसराइल की जानब से ईरान के खिलाफ जारी जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज हो रही हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने मंगल को जारी करदा बयान में कहा है कि फरीकैन मुआहदे की नौयत पर इत्तफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं, लिहाजा जंग के खात्मे से मुतलिक मुआहदा चंद दिन में हतमी शक्ल इख्तियार कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर बराए कौमी सलामती मार्को रूबियो ने नई दिल्ली जाते हुए सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि मेरे ख्याल में इब्तदाई मुसवदे की नौयत के बारे में मजबूत हमांकी और इत्तफाक मौजूद है, ताहम ऐसे मामलों में हर चीज़ पर इत्तफाक करने में चंद दिन लग जाते हैं, हत्ता कि इत्तफाक राय महज किसी एक लफ्ज़ या जुमले पर इख्तलाफ तक की सतह पर आ सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर कोई मुआहदा होना है तो हमें इस पर मजीद काम करना होगा, लेकिन जो भी मुआहदा हुआ या तो एक अच्छा मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। रूबियो ने आबनाए हुरमस को तजारती आमदोरफ्त के लिए बंद करने की कोशिशों पर तनकीद जारी रखते हुए कहा है कि यह गैरकानूनी, नाजायज और नाकाबिले अमल इकदाम है। उन्होंने कहा है कि ईरानी हुकूमत के अलावा दुनिया का कोई मुल्क गुजरगाह पर फीस लेने के निज़ाम की हमायत नहीं करता, ये नाकाबिले कबूल है। ऐसा नहीं हो सकता, अबनाए का खुला, बिला रुकावट और बिला मुआवजा होना ज़रूरी है और यही होना चाहिए।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान के जुनूबी इलाके में मुतअद्दिद हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्चर वाले मुकामात और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के तर्जमान टिम हॉकिंस ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि अमरीकी फौज ने आज ईरानी फौज के पैदा करदा खतरात के मुकाबले अपने फौजियों के तहफ्फुज़ के लिए जनूबी ईरान में दफाई नौइयत के हमले किए हैं। हॉकिंस ने कहा है कि अहदाफ में मिसाइल फायरिंग के मुकामात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश में मसरूफ ईरानी कश्तियां शामिल थीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड जारी जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी अफवाज का दिफा जारी रखे हुए है। हॉकिंस ने हमलों की मजीद तफसीलात फराहम नहीं की, ताहम ईरानी ज़राए ब्लॉग ने पीर की सुबह शाया करदा खबर में कहा है कि जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास और खलीजी साहल के करीब वाक़ सेरेक और जासक के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान की नीम सरकारी फॉर्स खबर एजेंसी ने कहा है कि बंदर अब्बास के मुकामी रिहायशियों ने कई धमाकों की आवाज़ें सुनी, ताहम इब्तदाई तौर पर धमाकों की दुरुस्त जगह और नौइयत वाज़े नहीं हो सकी। इसराइल ने जनूबी लुबनान पर फजाई हमलों में कम से कम 17 अफराद को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया है। लुबनान की सरकारी खबर एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लुबनान पर फजाई हमले किए हैं, जिनके नतीजे में कम से कम 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। ये हमले नाफजुल अमल जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियां हैं। नबतिया के इलाके कफर रोमान के कब्रिस्तान को निशाना बनाने वाले हमले में 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं।

सामिन, अमेरिका और एथोपिया के दरमियान 11 मई 2026 को दस्तखत किए जाने वाले दो तरफा स्ट्रक्चर्ड डायलॉग फ्रेमवर्क माहदे के बाद से सफारती रबतों में आने वाली हालिया तेज़ी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तश्कील पाने वाले नए सिक्योरिटी ढांचे के एक अहम इशारे के तौर पर देखा जाना चाहिए। वाशिंगटन और अदीस अबाबा के दरमियान होने वाली ये आला सतही मुलाकातें न सिर्फ उन दोनों तरफा ताल्लुकात की बहाली की अलामत हैं जो तिग्रियाई जंग के दौरान ख़राब हो गए थे, बल्कि ये इलाकाई जियो पॉलिटिक्स की असर नौ तरतीब का भी मज़हर हैं। इस तनाजुर में ताल्लुकात के इस दोबारा आगाज़ के अमल का तज़िया तीन बुनियादी महवरों के तहत किया जा सकता है: सिक्योरिटी तरजीहात की तब्दीली, इलाकाई मुसाबिकत में शिद्दत और बड़ी ताकतों का अमलियत पसंदाना नुक्ता नज़र। हम इस मौजू पर वर्साम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवेजी ओलू का तज़िया पेश कर रहे हैं। पहला महवर यह है कि सिक्योरिटी को एक बार फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात के मरकज में रखा जा रहा है। खासतौर पर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और एथोपिया के वजीर खारजा गेडियोन टिमोथियोस के दरमियान होने वाली बातचीत में दिफा, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसे मौजूदात का नुमाया होना यह जाहिर करता है कि अमरीका एथोपिया को दोबारा एक अहम सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर देखने का ख्वाहां है। यह सूरत हाल जाहिर करती है कि एथोपिया को न सिर्फ उसके अपने अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए बल्कि सूडान की जंग, बहिरा अहमर की सिक्योरिटी और अलशबाब जैसे खतरात के खिलाफ एक इलाकाई तवाजुन बरकरार रखने वाले किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। बिलखसूस बहिरा अहमर में हौसियों के हमले और सूडान की खाना जंगी से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खला ने वाशिंगटन को मजबूर किया है कि वह एथियोपिया के साथ दोबारा नज़दीकियाँ बढ़ाए, जो कि ज़मीन पर एक मजबूत फौजी ताकत है। दूसरा महवर यह है कि यह कुर्बत हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जारी कसीरुल जहती मुसाबिकत का अक्स है। सूडान की जंग अब एक प्रॉक्सी वॉर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इलाकाई ताकतें मुख्तलिफ कैंपों में तकसीम हो चुकी हैं। इस फ्रेमवर्क में अबी अहमद की क़यादत में एथोपिया की हुकूमत पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF की बिलवास्ता हिमायत के इल्ज़ाम ये जाहिर करते हैं कि अदीस अबाबा अब एक गैर जानबदार सालिस रहने के बजाय खुद एक मुतहरक जियो पोलिटिकल खिलाड़ी बन चुका है। इसी तरह फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों के बयान जिनमें सूडान में मदाखलत करने वाले तमाम बैरूनी अनासर को निशाना बनाया गया, ये वाजे करते हैं कि खुद मगरब के अंदर भी इस तनाज़े को देखने के हवाले से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। यहाँ अमेरिका का रवैया एक नुमाया अमलियत पसंदी की तरफ इशारा करता है। वाशिंगटन अगरचे सूडान में एथियोपिया के किरदार पर उठने वाले सवालात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन वह इस मामले को दो तरफा ताल्लुकात की राह में रुकावट भी नहीं बनने दे रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एथियोपिया को इस इलाकाई निज़ाम में एक नागुज़ीर क़ुव्वत तस्लीम किया जाता है। एथोपिया अपनी बड़ी आबादी, फौजी सलाहियत और जुग्राफियाई अहमियत के बायस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सिक्योरिटी ढांचे में मरकजी मकाम रखता है। यह सूरत

0: डिक्सन, जिसने इस काम पर शुरू किया, सबसे पहले तय किया और उस ड्राई टेप की पट्टी के बीच में एक जरा सी पाक गोज रख दिया। फिर इसने टेप को क्रोलिन नामी चिपकने वाली कपड़े से ढांप दिया ताकि इसे खुद चिपकने से रोका जा सके और इसे लपेट दिया जाए। इस तरह इसकी बीवी जोसेफिन इस पट्टी को जितना चाहे काट सकती थी और जब भी इसे ज़रूरत होती थी ज़ख्म को अमली तौर पर ढांप सकती थी। डिक्सन ने महसूस किया कि वो अपने नए डिज़ाइन को तजारती तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और अपनी नई ईजाद को इस कंपनी की इंतजामिया को पेश कर सकता है जिसके लिए वो काम करता है। इस इत्तफाकी ईजाद के तजारती मुस्तकबिल को महसूस करते हुए कंपनी की इंतजामिया ने जल्द ही बैंड एयर ब्रांड के तहत पहली हाथ से तैयार करदा बैंड एड का आगाज़ किया। शुरू में पूरे मुल्क में फरोख्त कोई ज़्यादा अच्छी ना थी, लेकिन कंपनी की मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने तय किया कि स्कोटिंग क्लबों के साथ तआवुन करना, जो इस वक्त अमरीका में बच्चों में बहुत मशहूर खेल था, प्रोडक्ट को फ़रोग देने में बहुत फ़ायदा होगा। जब बॉय स्काउट्स अपने सफ़र के दौरान मामूली खराशों या ज़ख्मों के साथ घर वापस जा रहे थे, डिक्सन की मौजूदा ईजाद बैंड एड इनके ज़ख्मों के तहफ़ुज़ का बायस बनती थी। कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट तवील अरसे तक स्काउट्स को मुफ्त दी और इस तरह बैंड एड को होम हेल्थ केयर कैबिनेट में एक नागुज़ीर जगह मिल गई। मार्केटिंग के इस हरबे को बदौलत कंपनी ने दस्ती पैदावार जारी रखी, लेकिन चंद सालों के बाद वो तलब के मुताबिक न रह सकी और मशीन की पैदावार में तब्दीली हो गई। एयर डिक्सन इस ईजाद की बदौलत कंपनी के नायब सदर के अहदे से फायज हुए, जिसने इनकी कंपनी को अरबों डॉलर कमा कर दिया। बैंड एड धूल मिट्टी और गंदे पानी में मौजूद नुकसानदेह माइक्रोचेंस के खुले जख्मों के रबते में आने से रोकता है। इस तरह इन्फेक्शन को होने से भी रोकता है। बैंड पर हुआ के छोटे सुराख ऑक्सीजन को जख्म तक पहुंचने की इजाज़त देते हैं, जिससे जिस्म को कटे या खुरचों को खुद ही ठीक करने में मदद भी मिलती है। आज के बैंड एड्स को दर्जनों किसान मुख्तलिफ साइज और शिकार में तैयार की जाती हैं। दरहकीकत चिपकने वाली टेप के अलावा स्प्रे की शक्ल में भी मार्केट में तारुफ कराई गई हैं। ये स्प्रे जख्म पर रेशों का एक पतला नेटवर्क बनाकर जख्मी जगह की हिफाजत करता है, जिल्द के नए खलियात बनने देता है। मजीद बरा तरक्की पसी टेक्नोलॉजी के साथ बैंड एड्स की भी स्मार्ट हो गए हैं। बैंड एड की किस्में इन पर लगाए गए सेंसर के साथ स्मार्ट डिवाइसेस के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे जख्म की मौजूदा हालत की निगरानी की जा सकती है। इससे जब ज़रूरी हो इसे एक इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खुले जख्म बड़ी तेज़ी से भर जाते हैं। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अहतमाम को पहुंचा है। अब अपने मेज़बान फुरकान हमीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।